0: जे सालाय माते जे खना माते सं आबनो अप्लाई बो क्लाइना नि नांगो हे दा हाइदि ओ जरा सबा हाय न हाय कक दगु दं ग्रिन नाय फियो नाय हेलो हेलो हेलो शैमलिया रे चामुंग दा खनाय दंखा ना रे चामुंग दा थांगै दंखा बिनि आंगो जों कुबैनो जिनि बरक वान सप्ताह जों बरक गंगै फायखै जेखनो वान सप्ताह साखनि जे दंमानि एबा साखनो जों ज्ञान सियान रहरो अ ज्ञान सियानो जों थेबावै दमुंनो हिमना रेंग्या बा याप्रि बारनानि रेंग्या हंगायनो जों बरकलाय हाखरकलाय आ हाखरनि जों सिजायफायनानि बा बाजायफायनानि बा जों हायनावहाय जिनि बैसाखनो हारपेगकलाय मानो सुसावै मेका नांमानो जों सुसानानि बे जरा गलक मानो नांगौ हायनि बागै जों हाखरकलायासिनिनो जों वान सप्ताहक्लाय हेल'
1: हेलो
0: ए फुंखा हाम
1: फुंखा
0: हाम औ औ लामसुग जरा बनो न
1: औ
0: औ
1: औ
0: जाया गायसा याप्रि सेमा बायनो लांमा जयमान आबनो दैसाय दं
1: जों
0: थैगायनो जे थै थाङोबा जिनि लांमा जय थाङो आबैया जों गोथां दं थैब जिनि बैसागो जे खेब खेब ओंगै दंमानि बा जिनि बोखानो जायाख्लाय दंमानि आबु थैमा सोगबाय बाक्सा हेदा
1: थैमानि नाचेगे जुदि नों हाका जमै हिमिया हंखाय आब' जग' जों थैमानि थायलायो आब' नै बाबोनो जों मानसुखौ एफ्रि थेना नांनाय बा बेवै जों जेसा जागा थैखौ थौबाखलायना हामब' बलंखौ थौफिनना हामब' बिनि नों मोसा मायंसि दङ बलङो ओंखाय नों आं मोसा मायंखौ आरो जि नों थाङो ओंखाय नों वानसु गैया बाबिया आरो नों थांनायखौ दामं आबैया जों थाङियाव दामं न' दामो सं न' ขนาดบ่กี้แท้สินี่บ่เข้าบาดอยู่วันชูจังนั้นอ้าวๆบ่แลกคนจักอ่ะทางนั้นนี่ทีนี้ไลฟ์บ่ต้องอยู่ทางนั้นนี่บ่ติเคต้องอยู่ทางกระจังทําได้บ่ติเคเจ้าอยู่ทางกระจังทําได้เอ้อบ่นอกกระจังวันชูอยู่เยปริเช่นนั้นนั้นวันชูอ้าวขนาดบาดอยู่จังเดชะกะเพิ่นน่ะจึงต้องอยู่ที่นี่บ่น้อจึงถือยากให้จึงต้องนั้นนี่
0: जों तामो वानसुकबा जों बरक गंगै फायगे जतन मानो जतन ख्लाय मानो हनै त वानसुक सों अबहायनो फान बरो जे जों जत ख्लाय मानो फियाबा

암석들 때 있으면 가나라게 되니니 하이군이 거랑 반다워 그방마 지니 샬브룸브룸니 꺾람럭 파이딩게 어저라워 증 하이노하이 탕라이피우나이 되니니 샬까마 반다워 샬까마 반다워 증 차라이 동라이마니 자야 가시아야 프리시마 바이노치니 랑마 조이마노 네 허마나이 꺾둑니 위싱뜨이 꺾둑니 저라 클로그리작 피우가 하이노하이 अजरा वजन थांगलाई नै किछासा नरकनि कोगलाम फाशिंगो खनानानि नरकहायनो हाय कोगदुक्तै करेंगै माननाय चिनि लांगमा एबा चिनि चाया गायसा या प्रि शेमा बायनो लांगमा जयमानो ओ कोगलाम नो दै जिंग शालाय दंलाय माने जिंग लांगमाव गोबां मनो जिंग बरक चिनि जानि जा मुजुंग मानि जानि जा वान शुक मानि नो दै সামং ক্লাই অফিয়া বা বইনি কাইশা দাগিমু চাইয়ানো সুং লঞ্চ গৈ

0: हेलो,
1: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे
0: हैं? शैमलिया कोक दुख क्लाइमंग क्लाइमंग नोते कैसा वही था कोक शायदों का के हाय नो हाय नाइल फ्यू ने और जरा शब्ब कोक दुख तो
1: लाइन पर बनी रही सपोस
0: नरोक जेफ्रो कोक दुख क्लायो श्राइ श्राइ के कोक दुख क्लाय दे एबा जिंग कोक क्लाम शामानी जरा मुंशक के बंग निया देखे हेलो
2: अब वन सुविधा आयना जोंया अब सेमिया तामसे बरब जेपुरु हामिया तामोंबाय गोदालै गोरोङै थांगो बरब साखथाग नङा अब माने लांमानि समानि जागोन लांगो बर
0: औ
2: जे ताबो जे प्रेजेन्सि जनो अब नुगदालै थांगो बने तामों हामिया तामोंबाय आबरों यापि आबो काहाम सेमा बरा थांगो नुगदालै आइ बरों जोड़ी पुलाव नो वन सिपाह के अबो किरी खां के आसाम उन खामिया वो साय वे बरों सब सुरी काम करों तो हम बुमा बुखानी कैसा इमान पोरा खेमन तमो के बिने लंग मनो बबो पांच नरों नाम पाकों
0: आओ आओ अब नंग थाशिंगो नो सका जंग या प्रिशियना निशकांग चीनी उकलोक बुस कांग सिंग नो हम

फुफान चंग याफ्री शेदी हाइके निनी का हम हमियानो वनशुक दी ते निनी नोक नोखुंगनी बरकनी हम जाक मानम बचें किसे वनशुक ही नाइदी जैसे शामुंग लाइने पानो बिनी कोक नो एबा नोक नोखुंगनी कोक पीती रोग नो चंग वनशुक ही नाइने नांग ते कुबनी शालगवा हाइनो हाइनो रोग बाइक रंग पीनाई ओमो हाइनो कोक का हम चंग शालाई फ्यूनाई ते आं जतन न कयना निमो सुंगो चंग जतन बुने बगे अब कैसे लाइव शो चली दंग हाइने बगे जो ओपेनलि जैसा ककनोफना जो यांग शेयर क्लैं गए अब जो पीसा जगह थाना वन सूग बाबी जो ककलम यांग जो मासा लाइने हाइके जतन फुका हमियाफ्रे फूंग जरा आश्री जरा तई नरक गजार नरक बुखुक सबिता दंगमानी मा बाजासी जतन हाइनो हाई फूंग जरानी हम्बाइया फारू

0: मा सोरोंनाय दा गोरों रगनि थानि इंगे मा सोरोंनाय
1: अबैसै आ दागा से दागा सब आ प्रदेश सिंचनि जेता हम बुझले माने सिनि कोंते बाविना तो माने सिं काम के जाना नंग माने सिङाबो काहे थैमोन
0: जों
1: थाय थाय जों जिवनाय सिबोय फरम मा करै बय दोसि कलाय बय हामें सें हां सताबो नि सागो सब खिने कारण आबो पारा नि के नक नि आं कोनि को पारा को पनि हम पाते लावर पे कुपु जों पे खानि सेजों बागैया जतन चलने लाम का सां खलाय गोदाल खन चलाय के छर बेरो आरो पुरो जतन बाय सुविधा नि थां आरो आं सें सिन अपन जत दादा न सिनि वान सो मनि पॉजिटिव वान सो गंगा सें काम थां मन ओहो बतो म सा कर बुनि कुन के लिजि खलाय बुनि बाय काम खनि लिजि काम ओ ओय ता आरो सिन वान सो मनि सो मनि पॉजिटिव मने सिनि काम वान सो नंनाय नेगेटिव थाङो दाबो निजिनबाबो थाङा बुनि हामें थाया निजिबा हामिया माना कारण मा थाङा एलाकार मा थाङा समाजाव मा थाङा आफोर बुनि निजि हामें फाय आफोर निजि थाङो सब समाय जाबो दिन के थाङो लाङो मा थाङो सा खिनि बारि मुवा थाङो पजिटिभ थाङो नांनाय तार पर ना खिनि खाथे जतन कय जाना था आइ बागै जतन बय काहाम आनि वा थुमन का आफ पकने आसन खाथि नां खाम
0: बलाय ना हामबाय दाखौ बलाय ना हामबाय आफारि केजों रसाप मुंग तांसा खनालायन अजराव खनातत रसाप मुंग रसाप नायिंखा जयंत जमातिया बाई रसाप जाक रसाप मुंग

बे मुफाय मानो जों गोबां बर'रावबो बे होनजागै मानो साजागै मानो पद्रे पद जों ककखानाय मानो सामुं सिखुन साफानानो ओंख्लायनानै थांदि जेंनानै थांदि गोबां बर' गोबां कक सानाय खु कायसा कायसा कक सानाय आमारे बागै बनि ककनो आसा खानायावै नों आगैन वान सुगै खाव चङै नामानि आसामुं न नों ख्लायदि नों साक्सेस बुंनाय गाहाम बुंनाय बनि कक खानावै उद्रु मुद्रु नरम हाइके हेलें बेबेंखे गेबे लोङै थांगांखे निनि सामुं जागला आबनि बागै खाग्राखे निनि वान सुखमानि नक्राखे नों नादि दै सामुं अंखरदि ननके बफान मेचानि मांगला अबायखे नों निनि लांमाव गाहाम मोननाय साक्सेस जोंनाय आव अबन' दिनै गायसा दिनै गायसा विक नै मानो जों बायाब्रावनि ककबो जों खाना मुसुंग' दिनै नक नखुंनि बाय बन दाखौ बुखौ ब्रावनि गौरबो जों खाना मुसुंग' हायखाबा नों सामुं ख्लाय दंमानि आब'निनि दाखौ बुखौ रावनि सामुं बाय गोदालिया मिलिथाया सलताया ओंखाय बरक जाजागिया लासि जागै फानो मानो आबा हिखे पद्रे पद्रे बरक ननाव होनै फानो मानो दाबो निनि बाय खरकसा साख्रि ख्लाय दंखा नोंखे दाबो साख्रि रक ख्लायलि ख्लाया ओंखाय नोंखे सिखुन सा दुकान खुलकना नायखाया आरावबो नों होनजागै मानो आरावबो निनि दाखौ बुखरर लासि जागै मानो लामा गानाव दुकान हाइखे खुलकै दंखा हाइखे रै दंखा पद्रे पद होनजागै मानो साजागै मानो याबा निनि सामुं नों नमा ख्लायनाय निनि नक नखुङ' आजिवै नों नमा दबुनाय नों नमा जारनाय माबानि बागै केबनि कग्रुनो आसे खानानै नाङा सामुंग' इनकाम ख्लायथानिग' नों सामुं ख्लायथानि इनकाम ख्लायदि निनि नक नखुङो गाहामखे नायथके लांदि अबसे सय नांगौ माने कग्र' फारिखे जों गोबां मा कग्र' सालायखेबा रोसाफुं तांसा खानालाय नजराव खाना ततक रोसाफुं खानालाय नुफायदि खानालायनो खोनाथ' रोजाबमुं अबंखा सादनारि आं बाय रोजाबजाग रोजाबमुं

0: खाना माबाय जिनि खाबाय मानो बखादेराय मानो खाबेलै मानो जों जेसे सामुङो फानो जों सामुं खलायखानखाना सामुं जासानाय आबुबो गक्रि आबाय गक्रि ओंखाय खामालकनाय सामुं तो देराय मानो जिनि पद्रेपद सामुं पद्रेपद खेजों देराय मानो आमोनि बागै खाथैनानि गक्रि जों जिनि सामुंजों खलायमा थानाय आबाय के सालसे सालसा जों आसामुङो खामंनाय गब्लायंनाय जिनि सामुंसा खामानै न जों जिनि रां पैसा आजि थानिव जिनि खामंसिनाय जिनि बर'नि लांमा तो आबुनो नासिगमु जिनि खाम आजि खासे जों खामगे तंमानाय जिनि सेराय खनाय रग्न जों खामगे फोरोंगै दिसाय तलांमानाय तामनि हिंखांखे रां पैसा बाय गोबां मानो बर' रग बखा तरो साहसुंगो सामुं ख्लाय दगो तै कक थासे सानाङैबो निनि कक न बुयखानानाङैबो निनि किसिसा हिलेकमु तंनानै नांगौ हिलेकमु रां पैसा बायसे गोबां मा हिलेकमु रां पैसा बाय गोबां मानो साया सुगिया हायकेबा किसामिसा हामिया बेभाग न खलब जागौ होनि हेमाहाय रां पैसा बालाय खेनो जिनि लांमाव बालाय खेनो नांगौ तै रां पैसा आबो गाहाम आजि गाहाम लामाथै आजि मानि रां पैसा ओंनानि नांनाय आबोन जिनि नासिक मुं न जों आजिवै गाहाम गोरोंखे नख नखं नायथ' गोदलाङै थानानै नायनायदि गोबां मा बर' गोबां मा कस्त' खालाय माने बिसिंतै हायखाबा खलायो बासाव खलायो बासाव खलायनाय गोबां मा बर' साक्सेस जोंनाय रग दङ जों बर'क न' नायनायदि बर'क थाखलायावै बेबसा रग' हायखाबा बानिया रग' त' जरा जरा आप डाउन फायो आजरा रग' जों खाबायावै जिनि सामरावनो जों ख्लाय थानानै नांनाय बिजनेस हायखाबा जिनि बानिया रग बायथै साहाय रगखाय बा फान बाय थांखा जों ते बैसा संसारना नांनाय अबनो जिनि गायसा नाहारमु जिनि गायसा बोखाव ग्राक वानसुकमु अबनो तंना नांनाय जेसेबा नोंथां आं अ सामुंनो नख्लायनाय अ सामुंनो आंनो सायमानो आंनो बुजिव' अर' बाहायखे बासानाय अर' बाहायखे सामुं ख्लायै थानाय आब' नों सैमानो बुजिव' अबनि बागै नों वानसुकै नामानि सामुंनो दांदि ख्लायदि आरावनो नन नों साक्सेस जोंनाय आरावनो नों सिनि मुं माननाय फारिखे गोबां मा कक्रक सालायखा हाइन हाय ककदुक फाय दंखा नायनि नजराव हेलो दिपर काहाम
1: दिपर काहाम खुलुमका बुख
0: बेलायखेना लामसागोन नब खुलुमका सादि दं
1: आं बुखुक दिनै आं जुदि सामुं खायना होंगाय आं वान सुमान खाखनानै खाबग्रा आसलखे खाग्राखना नांनाय बुखुक अ सामुंनो दिनै आं खालाय जामा न न माया आइ आमा खायबो वान सुमान नांनाय जा बुखुक ओमफ्राय इं जुदि से अजराव नों नै काम जाफै जाफै अजरा गासै बर' खननानै खाय दंखा बे दामफानि नों सामुंनो खाय दंखा ओमफ्राय नों दिनै ककबाय नों खादोलो सामुंनो याखारिना ककजा बुखुक जेसेखेबा सामुं नांसारिनाय जिनि खाग्रा खायसे बख खालायनो नांनाय जा ओंखायसो ओंखायसो बिनि सामुं जानाय ओमफ्राय जदिसे बर सामुं खायसेनि बुदि खुलुग्रोमालिया बा बुदि सारिमालिया आं दंखा कक बिनि बुदि नाना खानानै जा माइ गम्बसा बहाफ्रु बुदि अक्रा रं खिसा सोंना नांगौ दा बा दारा फांखा बाफि फांखा बाय फांखा थागु फांखा दा आनो सामुंले मते मते जिनि खायना होनाय दंमानि
0: বুকুকাই বেলা সৎকে কক সাও তাই নাকুক মানে সাও বেলা হামবাই অবন जों बुदि माइ आङै दंखाबा सामुं जासु जासाय आङै दंखा बुरखाय जों जे सिनाय नुखनाय रग्न अखरा जाखरा रग्न बा नखनि अखरा रग्न जों सोंखांखाय ब सावन थाइसा ब सावन थाइसा ब सावन थाइसा फियाबासो ककबा मानि बिसिङ बबो

इमानो वानसुग इमानो मने इमानो अबाहाय जरा खाम अजों गाहाम गेतंनानै मनेयै दंनानै पजिटिव वानसुगनानै हामिया वानसुग मुं फायके जोंआबोनो जों मोबाइल लग फटो रग भिडिओ रग डिलीट खायमाहाय जिनि बखरकनिबो जोंआबोहाय हामिया रगनो बेबाखनो डिलीट खायनानै बेबाखनो याकारनानै बाद्रनानै अबाहाय वानसुग मुं कक मुं बरक बेबाखनो बाद्रनानै जिनि लांमा जरा किसी जासै अबो जों नायथके थानानै जों नायथके लांमानो नायथके थानानै बागै जों रां पैसा गोनां बंनानै नांगिया गारि गुरा गोनां नांगिया नख जिनि दालान पाका कुजुग कुजुग बंनानै नांगिया जिनि लांमानो जों नायथके बिन्दासके थानानै गाय जों जिनिबो खानसिम एसे पजिटिभखौ जों लांनानै नांगौ बेबाखनो गाहाम वानसुगनानै गाहाम कक सानानै बयनोबो हामजाग्रानि जबानानै अबरखा बेलायखानो जिनि बोखानाव दंथग्रो जों बयनो नासिलै बयनो हामिया साय दंखे आबो जिनि बोखा हामियांनाय जिनि बखक हामियांनाय जिनि वानसुगमानि हामियांनाय जिनि नासिलाय मुं फायगानखे जिनि बोखाव दंथग मुं ग्रिंनाय बेबाखनो अबरख हामिया अबन बागा वाहेरक बेबाखनो कारै रदि या कारै रदि बाद्रि रदि लांमा किसी सासे स्राब सासे जों नुगै दङ जिनि गाना गिनि गोबां मा बर' रग बर'नि जानै जानै जरा फायखे बर' याकारै माथाङाव संसार नंखौ स्राब जासै अबनि बागै अब अबाहाय जरा संसार नङ याकारै थानानै जरा बुफुर फायनो केबल सायमानिया जे दंसाक जों बेबाखनो दंथथके हासि खुसिखे दङै थांनानैसो फारिखे खोनाथथक रोसा मुं ताइ तांसा खाना लायबानो जराङै दंखा रोसा मुं खाना लायनानै रोसा मुं रं बाहायनो जोंनो बेलायखेनाव खात सारां रो खा दंथक रो जोंनो गाहाम पजिटिभ वाइफ रो अबनि बागै रोसा मुं रं बाहायनो दिनै लांमानि गायसा लगिहाय अबनि बागै रोसा मुं बेलायखे खोनानानै नांगौ जों फारि जों खाना लायनाय खोनाथथक रोसा मुं बिश्वनाथ दाबरमाबाय रोसाब साग रोसाब मुं आसोग सामानि उल' अरसा बनो खाना लायनो फायदि

जीवन के सफर में राही, मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में।

0: करेंगे देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे। लगता था ऐसे ही चलेगा, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वह वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: आने दो मुझे, क्यों बचाया?
1: अरे तुम पागल हो गई हो?
0: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
1: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा, सॉरी। अब ये ट्रेन तो मिस हो गई, अगली ट्रेन 6 घंटे में। यहाँ वेट कर सकती हो, पर अगर तुम चाहो तो अपने साथ कुछ पल बिता सकती हो। तुम्हें इसी पॉइंट पे आके छोड़ूंगा मैं, प्रॉमिस, पक्का।

सक भारत नि नाहर मुंग मान थानी वो शिकला रक नि नांगकुक मनी सामुंग ख्लाय थानी फान बक्सिन का हाकतर गनांगै और सामुंग बतांगनो तेबो दायती ख्लायना नि बागै बो माय भारत नेशनल सर्विस स्कीम ते नेशनल कैडेट डॉक नो कथावै सामुंग तांगनानि दागि मुंग रखा पांदाव मानजाखा केन्दोनि शिकला ते थंग मंत्री मनसुक मंदाबिया ते नायमथांग मंत्री याक्सु संजय शेट आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि अकक्तमा खनाय तंबायो आकाशवाणी ने कक्तुमा अपडेट मानने बगे लग इन खाइडी www.newsonair.com न्यूज अन एआईआर एप ते ट्विटर बाय फेसबुक प्लेटफर्म एआईआर न्यूज एलार्स यूट्यूब आईडी न्यूज अन एआईआर ऑफिशियल अबन कारिबो आकाशवाणी अगरतला केन्द्र ने कक्तुमा अपडेट मानाखे ट्विटर एबा एक्स हेंडल आकाशवाणी न्यूज अगरतला फेसबुक एआईआर न्यूज अगरतला ते यूट्यूब आकाशवाणी न्यूज अगरतला नायनानी नांगान ताबुक निशिमे बेबाग रंग नगो शालब्रुम रंग निशेप रेना सकांग बोशंग रचाप मुंग बंदे मात्रम ते जनगण मन रचापनानी नांगनाई मंत्रियोक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहा तिनी हदालामो अकक्नो शाका श्रृंगाई रक्निबिशिंग हानो हामजाकमा काहाम तंग मुंग ते बोशंग हामजाक मुंग नतुये खाबाचरना नाहारै हास्ते हापांग अकक्चंग मुंग नाहार काहनै ब शाका वातुनी मलो चयाउ चं फेरांगमान थगदनानि बागै चं फेरांग मन्त्री रतनलालना तिनि आगरतला व कुचुक बेरानि ककलाम पान्दा कायसा ख्लायका अककलाम पान्दा व ब हास्तेनि चं फेरांग तंगमुं चं फेरांग सेपना हानाय रकनि जत्त बेचेपनति ककलाम सालायका प्रिपेड मिटर रिचार्ज ताबुकनि कताल तां सेप सामुंग नांगनानि बागै ब बारजा नाजाक न थारकनो दागिमुं रखा पान्दा व चं फेरांग मन्त्री साका आकाबिका देरामुं बाइक रंगसासक थायो चं फेरांग देराके दायति ददरो सेप साब्रनानि बागै जत्त चंग फेरांग सामुंग तांगनाय रक्न तियार तंगनानि नांगानो अ पांदाव सालथां त्रिपुरा सिपाही जलाते खुवाय हांकरनि चंग फेरांग नायखंनि अफिसार रक भार्चुअल तै मानजाखा अ तालनि चुकुतै चि सालमारी हापानिया हायुं बेरामनि बानि खलाव डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कनक्लेभ संसार जागानो त्रिपुरा चा हामक्राय नायखंनि चेयारमेन समीर रंजन गुसाका अ कुथुम लाइमाव नायखंबाय कर्नाटक तमिलनाडु तै पश्चिमबंग कायब्रै मथा खक्स निरा नैचिदक रोजाक रांगबक सिनमुं नतुयै मुंसय रोलायानो मालमाता हामकाय नायखुंनि चेतन बाय तिनि आगरतला प्रज्ञा भवन मालमाता साखाम नायम थांनतै सेमिनार कायसा संसा जाखा आबनो चेंगिरिखा तांक्रा दीपादि नायार सेमिनारो मालमाता रक्नि कताल बेमार तै बेमार हामरनानतै शुक्रबुइ ककलाम अंखा ताबुक हायुंका फुटबलनि ककतुमा फुटबल हायुंकापनि प्री क्वार्टर्स फाइनलनि पाइथा कायनै मेचो थंगना अंखरानो कायब्रै हाकतर फुटबल थंग्रं लियोनेल मेसी आर्जेंटिना मिसर बाय थंगलायनो भारत नि जरातिनि हरनि दामसुकु सती थामचिव आबनि उल हर दामसा सती थामचिव थंगलायनो स्विजरलैंड बाय कोलंबिया त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन बाय नायकलजाक अरनि उलथाम डिविशन फुटबलनि सुपार लीग कप्लायंखा जम्पुइजला प्ले सेंटर उमाकान्त मिनी स्टेडियम संसाजाक थंगमुंग जम्पुइजला ब्रै बुक्सा गोलनि फेरबाय इकफाय फुटबल क्लाब नो मेचेनखा ताबुक नबारतिबारनि ककतुमा बसकां दामनै चिब्रियो हास्तिनि जत्त हांकर फेरांकगै गोबां खेवातै वावै मानहुनै हजाक मुंरखा नबारतिबार नायखं खनासालनि साखानि तंमारि तंगानो 33 डिग्री सेल्सियस ते खामानि 29 डिग्री सेल्सियसनि गानागिनि तिनि सालनि साखानि तंमारि तंगमानि 34.4 डिग्री ते खामानि 23.4 डिग्री सेल्सियस शारिकनि दाम बा सती थामचि जरा वातै वाखा 23.7 मिलिमिटार ককতুমা পাইনানি শিকাং ককতুমা বুবাক রক তৈবাইসা সাফিরো মন্ত্রীবক রক নরেন্দ্র মৌদি সাকা লুকুরকনি হামক্রাইনো ভারতে ইন্ডোনেশিয়ানি পুইলা খ্লাইথাই সামং কেন্দ্রনি হুকবার মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান তিনি প্রগতি তাংবতাংন চেঙ্গে রেখা তাবুকনি সিমি হাস্তিনি বেবাগ রংনগর শালব্রুম রংনি সেব্রনা সকাং বসং রচাপমং বন্দে মাত্রম তৈ জনগণ মন রচাপনানি নাংনাই হিনে সাকা মন্ত্রীয়করা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা फुटबल हायुंकापनि प्री क्वार्टर्स फाइनलनि पाइथा कनै मेचो थंगना अंखरानो कायब्रै हाकतर ककब्रक बाय ककतुमा परिमुं तिनि निबागै अरनो पाइखा उलनि ककतुमा आवाय एंगानो खनाफुं दामसनि सती ब्रैजिव'

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी संसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र साझा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहल

0: अन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
0: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
0: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
1: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
4: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

0: तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पालुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
2: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।